0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ കൊച്ചി 90 FM, എന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം. സംഗീത് കാ സഫർ.
1: बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में बड़े सोच के बारे में बात करा था। आज के एपिसोड में मैं आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बात करेंगे इसी विषय पर कि अपने सोच को कैसे बढ़ाए। तो आइए दोस्तों, एपिसोड शुरू करने के पहले सुनते हैं ये गीत। जरा सामने तो आओ चलिए, फिल्म जन्म जन्म के फेरे। गीतकार भरत व्यास, संगीतकार SN त्रिपाठी, और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

बहनों और भाइयों, बड़े विचारक केवल यह नहीं देखते हैं कि क्या है, बल्कि क्या हो सकता है, ये देखते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, सर जो तेरा चकराए, फिल्म प्यासा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन, और इसे गाया है मोहम्मद रफी जी ने।

बहनों और भाइयों, चीजों को वैसा नहीं देखे जैसा वे है, लेकिन जैसा वे हो सकते हैं वैसा देखिए। विजुअलाइजेशन हर चीज में मूल्य जोड़ता है। एक बड़ा विचारक हमेशा कल्पना करता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। यह वर्तमान के साथ अटका नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, कितना हसीन है जहां, जादू भरी है समा, फिल्म मिस्टर एक्स। गीतकार तन्वीर नकवी, संगीतकार एन दत्ता, और इसे गाया है आशा भोसले जी ने।

बहनों और भाइयों, अब बात करते हैं कि आप अपनी शक्ति को यहाँ देखने के लिए विकसित कर सकते हैं कि यह क्या हो सकता है, ना कि केवल क्या है। ये अभ्यास मूल्य जोड़ने वाली व्यायाम है। पहला, चीजों में मूल्य जोड़ने का अभ्यास करें। अपने आप से पूछें कि मैं इस कमरे या इस घर या इस व्यवसाय में मूल्य जोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ। किसी वस्तु का मूल्य उसके उपयोग के विचारों के अनुपात में होता है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, आंखों में क्या जी, रुपहला बादल। फिल्म 9-2-11, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने।

0: बस तेरा इंतजार है।
1: देखने में भोले हो पर वो बड़े चंचल,
0: हाँ जल में क्या जी
1: अजब की

बहनों और भाइयों, दूसरा व्यायाम, लोगों के लिए मूल्य जोड़ने का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप सफलता की दुनिया में ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं, आपकी नौकरी का अधिक से अधिक हिस्सा लोगों का विकास करने में जाता है। पूछे कि मैं अपने जूनियरों के लिए मूल्य जोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने में मदद के लिए क्या कर सकता हूँ। किसी व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए याद रखें, आपको पहले उनके सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत, ओ रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे। फिल्म मिस मैरी, गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार हेमंत कुमार, और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

बहनों और भाइयों, तीसरा व्यायाम, अपने आप में मूल्य जोड़ने का अभ्यास करें। अपने साथ एक दैनिक साक्षात्कार आयोजित करें और पूछें कि आज मैं खुद को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने आप को कल्पना करें कि आप क्या है, बल्कि आप क्या हो सकते हैं, तो अपने संभावित मूल्य का प्राप्त करने के लिए विशिष्ट तरीके स्वयं सुझाएंगे। बस कोशिश करें और देखें। तो चलो दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, अंतम फंतम छोड़ दे बाबू, हो गई तेरी हार। फिल्म हम सब चोर हैं, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, और इसे गाया है आशा भोसले जी ने।

0: बहनों और भाइयों, मैं अपने काम कर रहा हूँ और मुझे किसी और से मतलब नहीं है। यह रवैया छोटा है, नकारात्मक सोच है। बड़े विचारक खुद को एक टीम के प्रयास के सदस्य के रूप में देखते हैं, टीम के साथ जीत या हार के रूप में। वह हर तरह से मदद करते हैं, भले ही कोई ना हो प्रत्यक्ष और तात्कालिक मुनाफा या कोई इनाम। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत। चुप हो जा, अमीरों की ये सोने की घड़ी है। फिल्म बंदी, गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार हेमंत कुमार और इसे गाया है किशोर कुमार ने।
1: चुप हो जा, चुप हो जा,

बहनों और भाइयों, मैंने आपसे जो बात की है उसका अभ्यास करे, एक बड़ा विचारक होने का अभ्यास करे, कंपनी के हित को अपने सम्मान देखे। आखिरकार केवल कुछ ही लोग को सबसे अधिक जिम्मेदार सर्वोत्तम भुगतान वाली नौकरियां से पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों, अब मेरा जाने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि आपकी सोच को कैसे बदले। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।